0: तो जा खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स है, वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे समझना अलग चीज है। समझो भले ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ, मन में वृद्धि रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने आवे।

Sabi, समय आएगा जो आपके सामने आने से आपका दिव्य स्वरूप देखने में आवे, साकार साधारण स्वरूप गायब हो जाए। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देखते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई

0: Mary assisted me. पहुंची जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर दे ही अब मानी की रही, चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो सोन की जिम्मेवारी या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं हम, करनार पर बाप समान न्यारे और प्यारे, बाप समान बनने चाहते तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कपड़ा ड्यूटीज़।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी बाप दादा ने जो ड्रिल बताई थी याद है, 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक कर सकते हो तो इस फर्श का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बारी ये ड्रिल जरूर करनी जरूर। सो जाए तो 1 घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सत्वचन

निकलना ये मानो किसको

Bisa belajar.

símbolo. Mira todo avance.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम हर एक अपने वेला तो मन

कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूर

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है, खुशी नहीं कमाना। माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है, तो अवश्य इस समय को सफल कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा बच्चों से

0: Gioco dei
1: cosci.
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल की मूल्यांकन

0: देखिए अटेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

し。

más lejos que...

の国士が安保がね、ホスだよな、ホスだよ国士、ギフシス。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी सच्चाई अच्छी लगती है ना, जिसमें सच

0: सच्चाई बहुत प्रिय।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, नाचो गाओ। आपके ब्रह्मांड जीवन है, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विषय

क्यों कबाब भी चाहते

Choco. Be honest.

ya bien. Get to call me.

सबसे बड़ा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्टता के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव भावना और स्वभाव ठीक रहा। और आजकल

0: चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे अच्छे दिन चार।

见。

जिस रंग से

0: mão, quero ver me.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ചെയ്യുന്നോട്ട് കണ്ണ സ്വഭാഗോട്ടേ

Kecil.

Orfes Swaraj.

che se bio. Shit, it guys.

Esa es mi pena.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा बच्चों की बातें बहुत सुनी, कहते हैं हंसाते है बाप दादा को, अच्छा है। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़ी हो जाती है, लेकिन मन का कंट्रोल

ASMR 那个吗？Yeah.

Seva. Fala.

summer.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: ही जो स्वराज अधिकारी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट बाणियों को

假如Yeah.

Maybe.

サッとして。

サンドしちゃった。

संतुष्टा की शक्ति सुतह और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती So

とした、キステティ、パラステティケオバル、サダビデイ、パラステティ。

कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर Yeah.

Jim Bonoracan.

0: मनुष्य कितना भी बदलता लेकिन साकी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाली संतुष्ट
1: Just

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See ya.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र अच्छा। ये बेफिक्र अच्छा

care.

Bon dimanche.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Start.

तीनों लोगों में
Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सेब खुश दिमाग बातें का काम है आना, ये भी समझ लो बातें नहीं आएगी, बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य में लाना है। घबराना नहीं, तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे फिर से

0: सभी चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है ऐसे। अभी इस फरश ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बंधन में फंसने से
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
2: कैसे आपकी आज्ञा?
1: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना, सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोच के कहो नहीं। हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना, सब चलता है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दे दो, दिया डायरेक्शन, अपने संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दी मुख से ने। ऐसे त्यार होना ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा, करे हलचल करना तो ऐसा है, करना है ये बता दे देते, ऑर्डर होगा पूछ के नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फ्रिज था, ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो, आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया, मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये भी देह का अपमान, देह का पान फिर भी अलग की चीज है, लेकिन देह का अपमान ये सब मेरा पन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं, प्रसाद को मेरा मानना, ये देवान अपमान, ये अपमान छोड़ना ही संपन्न बनना, इसीलिए जो वर्णन करते हो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बेफिक्र बच्चा का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते अलबेला पन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

is some ape.

quelqu'un.

Elken Bob. फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल पर माया से किसी भी ढंग से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, चारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक।

0: subtle
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही बड़ा, लेकिन सब
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। Some.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे ये भी बाप दादा से रोरियां करते कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्रह्मण जन्म लेते हुए दिए। याद है अपने जन्म का वरदान हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर शक्तिवान भव का वरदान दिया। किसने वरदान दिया? आलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती। वो क्यों? जब आलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान के स्थिति में स्थित रह करके अगर आर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप आर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है। उस स्वरूप में स्थित होके मालिकों वरदान दोनों स्वरूप की समृद्धि के स्थिति में रह के आर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाते। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर आप कहते हो ना कि बाबा आपको अब याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। अनुभव हाथ उठाओ, अनुभव है अभी देखो हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता, हसूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। तो मालिक बन के ऑर्डर करो, हो जाती है ना, तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो। तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही
2: स्थिति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

जैसे आकाश में भी यहाँ कोई कोई सितारा विशेष चमकता।

चमकती हुई आत्मा याद आया अपना अनादि स्वरूप, सेकंड में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो सकते हो। अभी अभी एक सेकंड में उस अनादि स्वरूप

Tasso Rufdeko.

Nisunlar.

Das war doof. Koibi. Rajao. Bahatmao. Netao. This one.

Ich sehe.

Masarap.

con Sayuka here.

अपने पूछ स्वरूप को देख रहे हो।

अपना स्वर

पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जा। देखो अपना स्वमान, क्यों स्वराज अधिकारी।

जीवन में स्वयं मालिक।

baby. से प्राप्त

sabe. मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए, तो चेक करो सर्वशक्तियां प्राप्त है अपने स्वमान देखे जाएंगे, रिटर्न जर्नी करेंगे ना।

0: एक्सरसाइज करते नहीं, समय निकालो, बार बार ये स्वमान की माला पहनाने से, अनुभव करने से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता सकते, प्यार ही आपके समय की कंठिया, प्यार की कंठी आपको ये मेरे साथ कहो, आप बच्चों का भी फायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरी ख्याल स्वप्न में भी आती, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। Baby.

अभी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया। आप ब्राह्मणों को रचने के लिए स्वयं ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये अलौकिक अवतरण का जन्म दिवस

याद करने वाले बच्चे वाह बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा सभी के मन में

It.

खुशी की चल स्पष्ट दिखाई दे रही, पाप भी

Yo te lo...

Egypt. Ba-ba-ba-ba. But you gotta be Egypt. Ba-ba-ba-ba. Gate with

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

Check.

0: इस साइलेंस के सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। सरकमस्टेंस अनुसार
1: इस

साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कोई

0: वो शरद कर रही है। जमा का पुरशरत अभी कर सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Ball.

0: 气温高，阿基伯尼卡阿达尔本杰德，如阿尼伯
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जय छोटे।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो अपने एरिया के चारों ओर, संदेश पहुंचे है, फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी। ऐसे नहीं हो कि छोटी किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सबका बाप आया है। समय अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। मानो आपकी एरिया में कोई सेवा नहीं है, एरिया में तो जो साथी एरिया वाले अपने एरिया को चेक करना, चाहे छोटे ही गली है, साधारण लोग है, लेकिन बच्चा तो है ना, बाप आया है ये पता तो होना चाहिए।
pecho. Dijeron, hola, nana y leche, aunque no pata y ni para. ¿Qué quiere aquí, don Mastigo, gana? Yo acá, achana, cochupi. Pena.

0: के अपने एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ लेकिन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साथ लास्ट नंबर्स में रहम भी।

कैसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है?

मेरा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो रोज अमृत वेले के बाद देखना, बाप दादा चक्कर लगाएगा, देखेंगे सभी को। तो क्या दिखाई देंगे?

0: ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं, वाह वाह।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है। देखना इस वर्ष

0: अनुभव करेंगे, पता नहीं कहाँ फरिश्तों का झुंड सृष्टि पर आ गया है हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभकामना तो स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में ताता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। ओमा गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना दादिया स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय किसके ऊपर विजय बनता परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के अटोल अचल बन जाते। ये निश्चय रहता है कि मैं कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात आवे ना, आप नहीं कर सकते हो, हिम्मत थोड़ी कम है, तो इस तरह पाप को जो अपना हिम्मत कम करने वाली आत काम है ना, वो बाबा से सुपुर्द कर दो, बाप को दे दो, बाप ये मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ले लो, मैं ये संकल्प में भी नहीं लूँ, ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको संकल्प को आने नहीं दे, दे दो, वापस आवे तो दिल में नहीं रखना, फिर वापस कर देना। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा जो सोचे वो करके देगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये करें वो करें, ऐसा नहीं वैसा आया वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यार। तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि आप सभी आप और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड है तो सिंगल हुए क्या? लोग के जीवन अलग चीज है, लेकिन ब्रह्मांड जीवन में कंबाइंड रूप में ऐसे कंबाइंड हो जो कोई भी अलग कर नहीं सकता। ऐसे कंबाइंड हो ना, कंबाइंड हो ना कि अकेले हो, कंबाइंड समझते हैं कभी कभी।

0: sab kasati aur avinashi sat nibane wale baba kaha aur baba hasre kehte hasor sada hasr tum mauj mein rehte ho na rehte ho mauj mein utas to nahi hote hote haana nahi karte utas to nahi na mauj mein rehte ho मौजे हम बाप के बाप हमारे बाप आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले इसलिए इसी रूहाने नशे में सदा रहना
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है। और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Red Sun.

0: बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया। बाप दादा मन चीन जगत चीन बनाने चाहिए थे, टेंशन किसमें मन में ही तो आता है।
1: स्वरा

के बार-बार बहुत टेंशन में रहते हैं। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन खुश

0: Den Verlogo. Den Fri. Ka exempel dikao.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

चलो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh.

absolutely demon. To kiasan kalabe, vijay ban nahi hai na. Kisra veg so art vijay ban nahi hai. मस्तक में क्या देख रही है? विजय का तिलक, क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिए ना, चाहे लास्ट बच्चे पुरुषार्थ बेटी।

chico. Himmat rakh. Vijay. Praapt kar rahi.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

vas aquí.

नॉन बने और बच्चों

0: Francesco.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Okay.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से है? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना। तो अब गुरुओं को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गोरख को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, पाप अच्छा लगता है, कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी समृद्धि में भी बैठते बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं, लेकिन अभी ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए। वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है, इसलिए अपन अब एक रखी है, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो चली देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार
2: सेवा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय

Jeszcze ty. Aby sami ponieke na tysy. Mata.

Arrivederci.

आज तक क्या मांगा।

Shanti. Por ti. Dic. Sabi, me llaré.

बात करती है, मन में दुखी होके चिल्ला।

Ashanti.

Escaram, chamaram.

köpte sin McDonald's. Tottu sroko vi McDonald's-sakin. Open.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

समय तक खुशी

0: कोशिश और शक्ति दोनों वो सदा नहीं लेकिन कभी रहती कभी नहीं रहती। क्यों दिल से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो फायदा तो किया है, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, फायदे का फायदा नहीं उठाते हो, फायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज रियलाइजेशन, दूसरा रिवाइज करो, फायदे को रोज रिवाइज करो। क्या वायदा किया? अमृत वेले मिलने के बाद फायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मनोबल को बढ़ाओ, मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या समान संयोग से करते हो, मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की वा थोड़े समय की, इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर स्थित ऊंचा पाप के साथ स्थिति में स्थित हो, थोड़े समय में भी सेवा की तो आपको उसकी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। साथियों में सेवा में वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों की रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता परसा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Самая मते भी तो कि नहीं अभी मिनट की बात भी कही दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट जाए, समझा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अवित हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति। अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम है साकार और आप हो आकार और निराकार। अभी साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ, एक चाहिए
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

स्वरूप हो गए।

सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के साथ में नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज आवश्यकता का अटैक।

0: सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। अभी इसकी आवश्यकता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

saber.

C'est calmé. La guerre. Acha. Api. Hit it.

0: Bist du Lagau? Sie bleibt es.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो शब्द साथी और साकी, जब बाप दादा साथ है तो साकी बन की सीट सदा मजबूत रहती, कहते सभी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है। साथ है लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते, किनारे कर देते, जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पर जाता है या कोई ऐसी बात होती है ना, तो साथ का भी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते ऐसे। साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो, कोई है जो कहेगा साथ नहीं है, कहेगा कोई, कोई नहीं कहता।

0: Enesi, mana si Ketio yang muka sih? Mana sih? Mana si Ketio? Pici balik. Mana si Ketio? Hati cawda dia. Hati. Hati latihan mana haji?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़े परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं। वाह, फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न संस्कार। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक हो के चलना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहां धर्म और राज दोनों की स्थापना सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं है। या तो आप सबको राज भी करना है, तो राज में परिवार की आवश्यकता होती, और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Bob.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरद दे रहे समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी। सारे दिन में ये भी चेक करो कि कोई संकल्प अपमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं तो ये भी

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरे पन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माए हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों पे, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण अज्ञान ने आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की संजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की बहुत महीन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Take.

नजदीक

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो, मैं कौन, मैं फ्रिस्ता, यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे कभी कभी नहीं भी करते।

क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। This is

0: ikke
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

the week.

kiss something. Snap.

sad.

Rob. Soy yo. Oscar. Maname. Anbócaro. Jesse. Oh,

Dieser Juani, ich soll's sein.

0: mannen. Exercise. Sada. Tigring. Jesse. Sharir ki. Exercise. Sharir ko. Tundrast rakhti hai. Aise. Ye exercise.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: किस

0: पशुओं के दीप जगेंगे, कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाती है ना। आप विश्व में
1: स्व फिर सर्व।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। कुछ चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे, वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो, आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान, कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ नहीं। अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा, आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पीठे पीठे बच्चों को नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समस्याओं के रूप में

chupar.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा देख रहे हैं आपके अनेक भाई बहने अपने जीवन से साथ ऊंचे स्थिति में बैठ जाओ और पाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज की बात व्यर्थ संकल्प के समापति की बोल नहीं जाना, बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाते, तो बाप दादा देखेंगे कितने तीवर पुरुषार्थी बच्चे और एक दो को भी उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं ये भी खत्म करो, उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के वृत्त कोई भी और भावना नहीं, शुभ भावना शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेज फॉलोगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

bientôt.

shit.

行。

Debbie.

wish you a safe work.

alto sangalapa.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Smoke.

വത്സദ്വാര ഫാബ്രിഷദ്വാര ഫജദ്വാര Beep.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत उनके बनेंगे। संगम पर हर एक भगत भी बना रहे, योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर करेंगे

0: Lisa Apiasco. पक्का करते हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकते हैं कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारंभत वाले बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ, अभी पुरुषार्थ कर लीजिए, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे। ये शब्द समाप्त हो, करके दिखाएंगे। क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे? विनाश के समय दे। इसके

着，累给

Essa ordem.

0: 你，lekin ona almochekan moche febri shantin moche rem dilban sano se par puro to dite chao ye kyun karta ye kyun kehta ye soch nahi karta
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन जाते, इसलिए यह संबंध याद करो, या प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो सम्मान और याद करना। बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सोचते हो ना, सबसे आगे ते आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है यहाँ। सहकारी दुनिया है ना, सहकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। बाप दादा उस समय सोचते हैं सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन हो सकता है हो भी रहा है, हो रहा है कैसे कि पीछे वालों को बाप दादा सदा नैनों में समाया हुआ देते। तो सबसे सभी बहने तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनों में बैठे हो। नोरे रतनो, सुना पीछे वालों ने, और नहीं हो समय को शरीर पीछे बैठी है, लेकिन आत्मा सबसे समय में। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा पीछे वालों को ही देखते हैं। देखो नजदीक वालों को इस स्थूल नैनो से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनो से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनो में समाहित है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा मां का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है? ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा उसके हुक्म से हर कदम चला रहे, अगर ये समझ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: देखो, निश्चय का पार्थक्य परवान है, रूहानी नशा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष

0: जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो। लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, दिल खुश कर दो तो दिल खुश कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

अशुद्ध संकल्प कम चलते लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम योग के

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Okay।

टेस्ट भी आते हैं, समाचार तो अच्छा है, संसार समाचार जैसे अच्छे लगते हैं, तो ब्रह्मांड संसार समाचार।

समाधि। घटने की आलिंगन अंदर तो सुन ली माना समाधि, तो बात सच्ची भी है। समाचार सच्चा भी होता है, सब जो

तो जिस्म समझ आ रहे आप कर कुछ नहीं सुनते। अच्छा सुना चलन में अंतर आ
उस समय।

0: hätte ich ja nur. Für dieser Gänge. Du in unkre Tote. Bitte nach Papa Delge. Und unki Papa Kia. Und Patumi.
1: बातें सुनते हुए देखते
0: kebersihan. Jodhi kengen. Jodhi kini kebat kajeng. Bodhi mintu jengi. Arjun tusri kodhi kini me. Samen renga. उसको अपने को देखने का समय कहाँ मिले? बातें जो होती है कहीं बच्चे समझते हैं, बातें ही बहुत होती है ना। तो जो बातें होती है वो देखने में आती है, सुनने में आती है ना। बातें जितना बड़ा सुन

你怎么明白的？स्थिति है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष I'm

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पत्थर में अपने को नहीं रखो, स्वतंत्र।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes, sir.

horse thing.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय

चप जाओ, जैसे जाओ वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां

जहाँ जाओ, जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अनुभव करें कि ये क्या बन गई है। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान की सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना। कुछ भी हो जाए, अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। भटको नहीं, कभी किस सीट पर कभी किस सीट पर नहीं। अपने स्वमान के सीट सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो।
1: यहाँ है खुशियों का

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, लेकिन मानो बीच बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की, कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, होना चाहिए। और जब होता नहीं है, ये अपमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं कष्ट भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। परेशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करेगा। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान की निशानी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते प्यार का सबूत, समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समृद्ध अब व्यर्थ की समापति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं बेकारीपन से मुक्त करो आत्माएं, आप समृद्ध आत्माओं को पुकार रहे हैं। मास्टर मुक्ति दाता, हमें मुक्ति दो, क्या ये आवाज़

0: कोई मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा है यो तो ग्रुप और बढ़ता जाए तो भारत की समस्या खत्म हो जाए।
2: सेवा तो कर रही हो, खाली तो नहीं बैठे हो।
1: ऐसे जैसे पंप फाट डालते हैं ना, आवाज हो जाता है, ऐसे कोई आत्मक पंप लगाओ, एटम पंप नहीं, आत्म पंप। अच्छा बैठ जाओ, मुबारक को बोल, टाइम पर पहुंचने की मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे अभी सब खुशी में सभी

Ezeitera reinga. Canto el ao. Reinga. Reinga. O something.

خوش مزاج چهره ایسے